0: हिंदुस्तान से 25 बेहतरीन आर्टिस्ट टोरंटो आ रहे हैं और उनके साथ कनाडा के अपने बाकमाल फनकार भी इस सफर का हिस्सा होंगे। 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा। टिकट्स ऑन टिकट मास्टर।
1: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001, 9058191001, लाइसेंस नंबर 12374।
2: आवर लोन एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स कीप पाइलिंग अप, वी हैव नो मनी टू पे देम विद आवर लिमिटेड इनकम।
3: आई एम अफ्रेड वी आर गोइंग टू गो बैंकक्रॉप एंड लूज आवर हाउस, बिजनेस एंड ऑल एसेट्स। इज दिस व्हाई वी इमिग्रेटेड टू कनाडा?
4: जब कोई बात बिगड़ जाए,
5: help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, debt solutions specialist and insolvency counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
6: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection, 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस, 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन, 6473217444। इट्स 6473217444।
7: ब्रिंग्स यू द हॉटेस्ट साउथ एशियन फेस्टिवल of the year, Durham Summerfest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
8: Barbecue Tonight ki dusri location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein. 200 se zyada logon ki gunjayish, badi parties bhi aap arrange kar sakte hain. Barbecue items: Bihari kebab, Sikh kebab, kadahi, biryani, taza naan aur beshumar dishes. Zaika wahi aur khoobsurat second location. Parties ki booking ya malumat ke liye call kijiye 9052829868. Barbecue Tonight ki second location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein, 9052829868.
9: Canada mein aaye har khandan ka khwab hota hai ki unka ek apna pyara sa ghar ho ya karobar ho, lekin mortgage ke badhte rates aur gharon ki badhti keematein agar aapke khwab ko pura nahi hone de rahi, to Royal Financial Group ke Shiraz Hussain se rabta kijiye. Shiraz Hussain aur unki team 100 se zyada lenders ke sath kaam karte hain. Inki intihai professional team apne services mein expert hain. Mortgage chahe ghar ki ho ya commercial, industrial, private, ya aapko chahiye equity line of loan, personal loan ya business loan, 100% guaranteed approval. Call Shiraz Hussain, 647-271-4147, 647-271-4147.
10: Apne pyar

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: 6472957861 तो चलिए जनाब, हमें दीजिए इजाजत, दुआओं में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज बश जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी, वीकेंड। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। स्टूडियो इंजीनियर मरियम और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मौला।